0: இனி அந்த பாடலோடு நிறைவு பெற்றது இன்றைய இனிய ராகம். இனி கேட்கலாம் நேஷனல் ப்ரோக்ராம் ஆஃப் மியூசிக்.
1: ये आकाशवाणी है संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री श्रेयस नारायणन द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन. श्री श्रेयस नारायणन आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं. वे अपने प्रभावशाली आवाज, गहन संगीत ज्ञान तथा कर्नाटक संगीत परंपरा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने प्रारंभिक संगीत शिक्षा मुत्तुस्वामी दीक्षितर की परंपरा से जुड़े स्वर्गीय ए अनंतरामन अय्यर के मार्गदर्शन में प्राप्त की. इसके पश्चात उन्होंने प्रोफेसर एम ए वेणुगोपाल तथा स्वर्गीय पी एस नारायण स्वामी से प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिनके मार्गदर्शन ने उनके संगीत जीवन को आकार दिया. कई दशकों के संगीत सभाओं के अनुभव के साथ श्री श्रेयस नारायणन ने भारत और विदेशों के प्रतिष्ठित संगीत समारोहों एवं सांस्कृतिक मंचों पर व्यापक रूप से अपनी प्रस्तुतियां दी हैं. कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं तथा वे संगीत समीक्षकों और संगीत प्रेमियों दोनों के बीच अत्यंत सम्मानित हैं. अपने सफल संगीत जीवन के अतिरिक्त उन्होंने शिक्षण एवं शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से संगीत शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है. आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती एस आर राजश्री, मृदंगम पर श्री ए बालकृष्णा कम्मत और घटम पर श्री वाईकम एन गोपालकृष्णन.
2: दिस इज आकाशवाणी. इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ कर्नाटिक वोकल कॉन्सर्ट बाय श्री श्रेयस नारायणन. श्री श्रेयस नारायणन is a top-grade Carnatic vocalist of Akashvani, known for his powerful voice, musical depth, and steadfast commitment to the Carnatic music tradition. He received his initial training under late A. Anandaraman Iyer of the Muthuswami Dikshidhar lineage, followed by advanced tutelage under Professor M. A. Venugopal and late P. S. Narayana Swami, whose guidance shaped his distinguished musical career. With several decades of concert experience, Sri Shreyas Narayanan has performed extensively at prestigious music festivals and cultural platforms across India and abroad. He has received numerous honors and recognitions for his contributions to Carnatic music and enjoys the admiration of music critics and rasikas alike. In addition to his concert career, he has made significant contributions to music education through teaching and academic engagement. In tonight's program, he will be accompanied by Srimati S.R. Rajashree on the violin, Sri A. Balakrishna Kammat on the mridangam, and Sri Vaikam N. Gopalakrishnan on the ghatam.
1: Sri Shreyas Narayanan apne gayan ki shuruaat Sant Tyagraj ki kriti निन्नाड नेला से कर रहे हैं, जो राग कन्नड़ा पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है.
2: श्री श्रेयस नारायणन बिगिंस हिज वोकल रिसाइटल विद कृति निन्नाड नेला, अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग कन्नड़ा सेट टू आदि ताल.

0: प्रस्तुत है मुत्तु स्वामी दीक्षितर की रचना कामाक्षीम कल्याणी, जो राग कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू कामाक्षीम कल्याणी, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तु स्वामी दीक्षितर इन द रागा कल्याणी, सेट टू रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री श्रेयस नारायणन अब प्रस्तुत कर रहे हैं पेरिया स्वामी तूरन द्वारा रचित ताये त्रिपुर सुंदरी, जो राग शुद्ध सावेरी पर आधारित है और खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: द नेक्स्ट आइटम इज ताये त्रिपुर सुंदरी इन द राग शुद्ध सावेरी सेट टू खंड चापू ताल कंपोज्ड बाय पेरिया स्वामी तूरन।

0: श्री श्रेयस नारायणन अपने गायन का समापन संत त्यागराज की एक रचना दाशरथी से कर रहे हैं, जो कि राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री श्रेयस नारायणन कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद दाशरथि, कंपोज्ड बाय त्यागराजा इन द रागा तोड़ी सेट टू आदि ताल।

0: ये था तनियावर्तनम। मृदंगम पर थे श्री ए बालकृष्ण कम्मत और घटम पर श्री वाइकम एन गोपालकृष्णन।
1: That was तनियावर्तनम played on the मृदंगम by श्री ए बालकृष्ण कम्मत and on the घटम by श्री वाइकम एन गोपालकृष्णन।
0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री श्रेयस नारायणन का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर श्रीमती एस आर राजश्री, मृदंगम पर श्री ए बालकृष्ण कम्मत और घटम पर श्री वाइकम एन गोपालकृष्णन ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that we conclude the vocal recital by Shri Shreyas Narayanan in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Shrimati S.R. Rajashree on the violin, Shri A. Balakrishna Kammat on the mridangam, and Shri Vaikim N. Gopalakrishnan on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashwani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashwani.